जैसे जल में है कमल निरालम, मुर्गाई नैसाण सुरत शब्द पव सागर तरिय, नानक नाम वखाण सुरत शब्द पव सागर तरिय, नानक नाम वखाण सो कहो टल गुर सेविय, एहने सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु के, जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदे साह जिस पास बहिठिया सोही है, सब नांदा विसा हो सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे साह आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे साह आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारा, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया,

0: जय मात पिता सुत मीत न पाई,
1: मनुआ नाम तेरा संग सहाई।
0: जय महाप्यान दूत जम दल,
1: तै केवल नाम संग तेरा चल।
0: जय मुश्किल हो बैत पारी,
1: हर को नाम जिन माए उधारी।
0: अनक पुने चरण करत नहीं तरे,
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे।
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे,
1: नानक पावो सुख नेरे।
0: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया,
1: हर का नाम जपत होए।

0: अनक जतन करि चनत रापै
1: देखा अनेक गण नहीं बुझै
0: ओले पाप दरगे नहीं सिजै
1: टूटस नाहीं उपयाल
0: होए व्यापे माया जाल
1: अवर करतूल सगली जम डानै
0: गोविंद भजन में ते नहीं मानै
1: हर का नाम जबत दुख जाए
0: नानक बोले सह सुभाए
1: चार पदार्थ जेको मागै
0: साजना की सेवा लागै
1: जेको अपना दुख मिटावै
0: हर

0: जय प्रसाद शक्ति अमृत खा है
1: तेष्टा कर को रख मन माए
0: जय प्रसाद सुगंधत तन लावे
1: तिसको सिमरत परम गत पावे
0: जय प्रसाद बसै सुख मंदर
1: तिसे त्याए सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याए त्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाट पटंबर हटावे
1: तिसे त्या कद अवर लभाव है
0: जय प्रसाद सुख सेज सोई
1: मने आठ पैर ता का जस गावी जय
0: प्रसाद तुझ सब को मन
1: मुक्ता को जस

0: राष्ट्रपती
1: साधक संग मुख उज्जल होत
0: साध संग मल सगली होत
1: साधक संग मिटे अभिमान
0: साधक संग प्रगटे सो ज्ञान
1: साधक संग बुझै प्रभ नेरा
0: साध संग सब होत नवेरा
1: साधक संग पाए नाम रतन
0: साधक संग एक ऊपर जतन
1: साधकी महिमा बरने कौन परानी
0: नानक साधकी शोभा ब्रह्मा है समानी
1: साधक संग अगोचर मिले
0: साधक संग सदा पर फूले
1: साधक संग वै बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की देन
0: साधक संग मनोहर बैन
1: साधक संग न कत हूं तावे
0: साध संग स्थित मन पावे
1: साधक संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

0: जब लग जाने मुझते कछ होए
1: तब इसको सुख नाही कोए
0: जब जाने मैं किस करता
1: तब लग गर्भ जोन मैं फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग नेचल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: प्रभ कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक को छूटे
0: सहस कटे लख कोट तावे
1: तृप्त नावे माया पाछे पावे
0: अनेक भोग बिखे आगे करे
1: नै तृतावे खपका मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: मनोरथ फिरते सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: प्राप्त होए
0: करन करावने आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: करन करावन करने हार
1: इसके हाथ कहाँ विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप प्रभ सोए
0: जो कुछ

0: अष्टपदी
1: संत के दुखन आर जा कटै
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटै
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन सो बाते हीन
1: संत के हते को

0: मानुख की टेक बिरथि सब जान
1: देवन कोई के भगवान
0: जिसके दिए रहे अकाए
1: मन कृष्ण लागे आए
0: मारे रखे को आप
1: मानुख के कृष्ण हाथ
0: जिसका हुकम भूय सुख होए
1: जिसका नाम रगड़ पर होए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
1: नानक विघ्न न लागे कोए
0: पुस्तत मन में कारण निरंकार
1: कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना।

0: जपी हर बिंद
1: हर हर कर्म सर्वन हर कथा
0: हर हर नानक जल मथा
1: बड भागी ते जन जग मा है
0: सदा सा हर के गुण गाए
1: राम नाम जो करें विचार
0: सीहे जन मन करें संसार।

0: अंधकार दीपक प्रगास
1: गुर दर्शन देख मन होए विकास
0: जो महा उद्यान में मार्ग पावे
1: साधु संग मिल जोत प्रगटावे
0: तिन संतन की बाछो तूर
1: नानक की हर लोचा पूरे
0: मन मूर्ख काहे बिल लाइए
1: पूरब लिखे का लिखिया पाइए
0: दुख सुख प्रभु देवन हार जो कष करे सोई सुख मान कौन बस्त आई तेरे

0: मैं जोगी
1: तब मैं तभी सर गृहस्थ में भोगी
0: जाए जाए भगत है सुख पाया
1: नानक तीस पुरख का किन अंत न पाया
0: जाकी लीला की मितना है
1: सगल देव हारे अवगाहे
0: पिता का जन्म के जानने।

0: करे खिनमा है
1: पूर रहे पूरन सब ठाए
0: नाना विध कर बंत बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाई
0: सब कर सके सब तिसके ठाओ
1: जब जब जीवे नानक हर नाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुरा
1: नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आगाज पाता
1: नाम के धारे सगल आकार
0: नाम के तारे पुरिया सब पावन।

0: कल राख है
1: पसंद कर लस्कर कोट लाख है
0: इसका शासन काटते आप
1: ताको राख देकर हाथ
0: मानस जतन करत बव पात
1: तिसके करत बिरथे जात
0: मारन राख है अवर ना कोई
1: सरब जिया का राख सोए
0: आहे सोच करे रे प्राणी
1: जप नानक प्रभ लग बढ़ाई
0: बारंबार बार प्रभ जपिए
1: अमृत मंत्र पिए
0: अमृत जन गुरु मुख पाया।

0: सगुण भागी पाए
1: सफल दर्शन पे खत पुनीत
0: परसत चरण गति निर्मल रीत
1: हितत सांग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगह गए
1: सुनकर वचन करने आकान
0: मन संतो का।

दीनन की प्रतपाल करे नित, संत उबार गनी मन गारे, पच पछु नग नाग निराधप, सर्व समय सबको प्रतपारे, पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचार, दीन दयाल दया निद, दोखन देखत है पर दीत ना हरे, जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को देह, काहे को डोलत है तुमरी सुध, सुंदर श्री पद्मा पत लय है, सो कहो टल गुर सेवी है, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद दिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सजन सच्चा पातशाह, सिरसा हां दे साहो,

ब्रह्मा शरण परि की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुन राशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा। पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाहा गरीब निवाजा। अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोह लेहो उबारे। कब्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो। आप हाथ दै मोहि बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सेखे सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय सबै रन को आज संगरिय।

पाँव सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रिय स्तुजु करिय रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्ट

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन की सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट की पट पट की जानै जब युद्ध करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप आपनी बोझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुव्रता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुने गुंग जो जाहि सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो जाकी एक बार चौ पई को कहै चौ पई। संबत सत्रह है सहस पणिजै, अर्ध सहस पुन तीन कहिजै।

दास गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार बाही गहे की लाजस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तम पाया सहज सेती मन वजिया वादा हिया

संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जेको खावै जेको पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित राखे उर धारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक।

कोई न जाने तुमरा अंत उचेते ऊंचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिय घर नौनि दयावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ते अंतर के बोलो जी

0: नानक चाहोए हो नानक चाहोए हो
1: नानक चाहोए हो नानक चाहोए हो
0: वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु
1: वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु व

उखावज ताल घुंगरू अनहत शब्द बजावे रहाऊ। प्रथमे मन प्रभु दय अपनाऊ पाछे गबर रिछावे। राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे। घर संग साधु चरण बुखारे संत दूर तन लावे। मन तन अर्प धरी गुरे आ गए सत पदार्थ पावे। जो जो सुने पीखे लाए सरदाऊ ताका जन्म मरण दुख फागे। ऐसी निरत नरक निवारे नानक गुरमुख जागे। आसम हल्ला पंजवा।

ताकै सिमरन जपति छुटी जाए हलत परत सुख पाई ऐ सासक दास जपो जपरसना नीत नीत गुण गाई ऐ भगत प्रेम परम पद पाया ए साध संग दुख नाठे छिजै न जाए ज पौ नाम आपे अर्थ निर्मल गाठे।

सुख पाई क्या कही जय के सब वाक सुनाई है जी कहना सुप्रभु जी पास सब किस कीता तेरा वरत सदा सदा तेरी जास जी दी बड़े जाई ता तेरी बड़े आई त्यों तुझे थे जाओ नानक की प्रभ सदा सुदाते मैं तान तेरा एक नाओ आसा महला पंजवाओ।

जो किछ है सो तेरा। कदों झोलियां भरदियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जावे। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा करदे ने, अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। जदों भी अपने महलां विच आंदे ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन करदे ते फिर अपने बच्चियां नूं मिलदे सन। किते भी कार विहार ते जाना ते पहला सतगुरां कोलों आग्या लैंदे सन। एक दिन रणजीत सिंह जी बहुत भारी जंग लड़न वास्ते जा रहे ने ते जान तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अगे गल विच पा के पल्लू अरदास कर रहे ने, सतगुरु मेरे विच कोई सियाणप नहीं, मेरे विच कोई बल नहीं, तुसा बख्शिश करनी है मेरी जित हो जावे। इतिहास विचों की सोझी मिलती है, लखां दी फौज ते एक पासे महाराजा रणजीत सिंह। आज इस मैदानी जंग विच रणजीत सिंह दी जित होई है, कोई भी बैरी अगे ना खलोया। बड़े बड़े राजे महाराजे रणजीत सिंह दी बड़ी शोभा कर रहे हैं, रणजीत सिंह तू ते कमाल कर दिती है, एडी तेरे विच सियाण किड्डी वड्डी जंग जित ली है। आ जदों हर एक ने शोभा कीती ते रणजीत सिंह दे मन विच भी मैल आ गई वे सचमुच ही मैं बड़ा वड्डा योधा, मैं किड्डा वड्डा काम कीता है, कोई भी मेरे अगे ना खलोया। आ जदों घर आया ना ते नित कर्म अनुसार सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे कमरे विच गया। जदों जाके नमस्कार करन लगा ते मन दे विच ख्याल आ गया, मना जित ते गुरु ने कराई है ते वड्याईयां तू लई जांदा है, तेरे मन दे विच क्यों मैल आई है कि मेरी सियाणप करके सब कुछ होया है। आ देखो असी निकी जिनी चंगियाई कर लईए, एक पखा भी गुरु घर दे दईए ते मैं मेरी विच फस जांदे ते उपर मेरा नां लिख दिता जावे मैं दिता है। आ मन विच मैल ही आई है ते रणजीत सिंह ने की कीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे चरणा विच बैठ के एक हाथ दे नाल अपनी दाढ़ी पकड़ी ते दूजे हाथ नाल अपने मुंह ते चंडा मार रहे। ऐ मना क्यों तेरे मन विच मैल आई, जित कराउण वाला गुरु ते तू बड़ियाईयां लई जांदा है। पढ़ो इतिहास की आख रहे ने, जोर जोर देनी चंडा अपने मुंह ते मार रहे ने, ओ काणिया बड़ियाईयां देण वाला गुरु ते वड़ा तू बनी जांदा है। हरी सिंह नलुआ बार सुन रहा है, सतगुरां दे कमरे विच रणजीत सिंह नू कौन बोल कबोल बोलदा है। आ जदों जाके दरवाजा खोलिया ते की तकिया, रणजीत सिंह आप सतगुरां दे चरणा विच बैठा, एक हाथ नाल दाढ़ी पकड़ी ते दूजे हाथ नाल अपने मुंह ते चंडा मार लिया है। क्यों तेरे मन विच मैल आई है, क्यों मैं मेरी आई है, सब कुछ करन वाला गुरु है। ते नलुए ने जाके हाथ पकड़ ले, रणजीत सिंह तेरे अखां दे हंजू दस रहे ने तू अपने औगणा ते पछता रहा, गुरु बड़ा ही दयालु है, उठ खड़ गुरु ने तेनू बख्श दिता है। सो सत संगियो कदे भी मैं मेरी ना आवे, ऐ सतगुरु जो किछ है।

दौलत बड़ा कोल है पर कोई औलाद नहीं। हर रोज सतगुरां दे अगे तरले करदा है, सतगुरु तू सब दी झोली भरदा है, मेरी भी झोली भर। असत संगियो जंग मंगियाणी दी गल है, पाकिस्तान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार

दिन अपने बाप नू धक्के मार के बाहर कट दिता। तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोलती है। एडिया एडिया उच्चिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रशादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी एक प्रशादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सरवाले अज इस नगरी विच आए। बाबा जी दी सोभा सुनी ती दीवान लगा होया है। समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़ियां भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडियां मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कट दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है। जदों अपनी मां नू बच्चे माड़े बोल बोलदे ने ते मेरे तो सुनिया नहीं जांदा। किड़ा गुनाह कीता है, किड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे ओए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों ते खुशियां किहदे नाल मनाईयां सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी? शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाएंगी, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगी। तू गुरु नानक नू भुला दिता। बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है, कदी संगत विच गया है, दुख वेले किड़े गेड़े मारदा सी। हंजू केरे, बाबा जी मैनू बख्श देवो। ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान। ते संगत अरदास कर देवे क्यों ना खुशियां आ जान। सेवकां नू भेज के इस दे पुत्र ते नूह नू भी बुलाया। बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दित्ती। आखण लगे बच्चिओ, मां ते प्यो रब रूप हुंदे ने। जिहड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे। इंज चंगा नहीं बाप दी सेवा करया कर। बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकदा है। आ सतसंगियो, परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बई, देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारियां रहमतां उसदियां दितियां होईयां ने। ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां सब तो पहला तकदे हां बई फटिया नोट केड़ा है। जे फटिया नहीं ते सब तो छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा वो प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई, सारा कुछ उसदा दिता होया है। कदों खुशियां आउणियां ने जदों सचमुच ही

तेरे घर दे अग्गों गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। ऐवें उपरों उपरों आखी जांदा है वे सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिन्हें तेनूं सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बई दिलों आख मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच

0: सिमर सुख पावो,
1: काल क्लेश तन्मय मिटाओ,
0: सिमरो जास संभरे के
1: नाम जपत अग्नत अनेके,
0: वेद प्राण सिमर सुध आखर,
1: कीने राम नाम एक आखर,
0: इनका एक जिस दीप सावे,
1: ताकी महिमा गनी नावे,
0: ताकी एक है दर्स तुहार,
1: नानक उन सुखमय उदारो,
0: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम,
1: भगत जना के मन विश्राम रहाओ,
0: प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे,
1: प्रभु के सिमरन दुख जम न से,
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरे,
1: प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे,
0: प्रभु सिमर किस बिघन न लागे,
1: प्रभु के सिमरन अंधन जागे,
0: प्रभु के सिमरन भाव न व्यापे,
1: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे,
0: प्रभु के सिमरन साध के संग,
1: संविधान नानक हर रंग,
0: प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद,
1: प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तुध बुद्ध,
0: प्रभु के सिमरन जप तप पूजा,
1: प्रभु के सिमरन बिन से दूजा,
0: प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी,
1: प्रभु के सिमरन तर गए मानी,
0: प्रभु के सिमरन हो सुफला,
1: प्रभु के सिमरन सफल फला,
0: जे से सिमरे जिन आप सिमराए,
1: नानक ताक लागो पाए,
0: प्रभु के सिमरन से पर उपकारी,
1: प्रभु के सिमरन सबते ऊचे,
0: प्रभु के सिमरन दिन सत बलिहारी, प्रभु के सिमरन ते प्रभु के सिमरन से मुख सुहावे, प्रभु के सिमरन दिन प्रभु के सिमरन सब ते ऊंचा,
1: प्रभु के सिमरन उदरे मूचा,
0: प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे,
1: प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे,
0: प्रभु के सिमरन नाहीं जम त्रासा,
1: प्रभु के सिमरन पूरा नासा,
0: प्रभु के सिमरन मन की मल जाए,
1: अमृत नामृत माए समाए,
0: प्रभु जी बसे साध की रचना,
1: नानक जन का दासन दसना,
0: प्रभु के सिमरन से तनवंते,
1: प्रभु के सिमरन से पतवंते,
0: प्रभु के सिमरन से जन प्रवान,
1: प्रभु के सिमरन से पुरख प्रधान,
0: प्रभु के सिमरन से बहमोता जे,
1: प्रभु के सिमरन से सर्व के राजे,
0: प्रभु के सिमरन से सुखवासी,
1: प्रभु के सिमरन सदा अविनाशी,
0: सिमरन ते लागे जिन आप दे आला,
1: नानक जन की मंगेर वाला,
0: प्रभु के सिमरन से पर उपकारी,
1: प्रभु के सिमरन ते सत बल हारी,
0: प्रभु के सिमरन ते सुख बिहावे,
1: प्रभु के सिमरन ते सुख बिहावे,
0: प्रभु के सिमरन ते आत्म जीता,
1: प्रभु के सिमरन ते निर्मल रीता,
0: प्रभु के सिमरन ते प्रभु के सिमरन ते आनंद कनेरे,
2: प्रभु के सिमरन बसे हन रे
0: सत कृपा दे अंतिम जाग,
2: नानक सिमरन पूरे भाग,
0: प्रभु के सिमरन कार्य पूरे,
2: प्रभु के सिमरन कबू न चूरे,
0: प्रभु के सिमरन हर गुण बाणी,
2: प्रभु के सिमरन सहस मन,
0: प्रभु के सिमरन
2: सिमन कमल बगासन,
0: प्रभु
2: के सिमन अनंत चुनकार, नानक तिन जन सरनी पिया,
0: सिमन कर भगत प्रगटाए,
2: हर सिमन लग वेद उपाए,
0: हर सिमन पै सच जति दाते,
2: हर सिमन नी चौंकंठ जाते,
0: हर सिमन धारी सब करना,
2: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमन क्यों सकल कारा,
2: हर सिमर में

नाम जपत होए सुखिया अरका नाम जपत निस्तरे अरका नाम जपत अपावे ए हर नाम संग होत से हला नानक गुरु मुख पर गत पाइए नाम जपते पार पराही अरका नाम कित काल वधारे नाम जप पावे बसराम अरका नाम कोट पाप खोवे उपाइये साध के संग अरका नाम मुह संतोष अरका नाम संग जियारम अरका नाम ते नाल शान हर के नाम की तुम ऊपर शाम नानक हर हर अमृत बरखे शांत जना के मन बसराम हर के नाम उतरे जल कोट हर उपत सात कमात पार ब्रह्म जन की नो दान नानक जन के व्यर्त विवेके हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर नाम जग द परे न पंग हर के नाम जन शोभा पाई हर नाम जप कछ नाही वियोग नानक पूजे हर हर देवा हर तन जन को अप्रभ दीना हर प्रताप जन अवर न जानी सुन समाध नाम रसमाते हर का भगत पर दिन छपे नानक जन संकेते तरे राम तेन हर हर गुण गाम नाम सुनत दर्द दुख लथा संत प्रताप दुर सब नसे संत की सेवा।

0: सद करे अनेक जन रचना परावर नानक रचना प्रवरची बहुत अनुक प्रकार अष्टपदी
1: यही कोट आचार्य हरि
0: यही कोट परम दासी यही कोट तुम्हें सर होते यही कोट का विचार है नान करते करना पावे यही कोट अंदया नहीं यही कोट विकार में कोर यही कोट पर दुख ना करे
1: यही कोट पर देव परमाहे
0: नानक करते ज्ञान करता रचना यही कोट राजे रस होगी यही कोट पाथर पर ढुकाए
1: कई कोट देव भूमंडल कई कोट देव दान इंद्र सरस्वती नानक देव सुभावे तिथि संसार कई कोट वेद प्राण सिद्ध सास कई कोट
0: नाना प्रकार जंत
1: कई कोट ग्रहणे स्वंती है कई कोट भूत प्रेत सुपर मरगास नानक आपने पत्र आप पूर कई कोट नरसुर निवासी कई कोट बोझों नहीं फिरे कई कोट काले तक पाए कई कोट माया में चिंत नानक जब की प्राप्त के हाथे राम राम सब दिन राजी।

0: पिता का जन्म
1: जन्म
0: मरे
1: बहुत दूर पर पावे सो मूर्ख अंधा अज्ञान है नानक इहां मुक्त आखे सुख पावे
2: मान कछु संग न जावे
1: तनवंता होए कर गर पावे
3: समान संग न जावे

प्रेत मन होए विगास साधु संग जोत प्रगटावे नानक की अलोचा पूर गुरु लिखे का लिखिया पाए और त्याग तुझे जितारे

0: सो शिव सा सा स्मरे अपने सिर की सत पर रखे अपने सेव को नाम जपाई ताकि गत मित कोई न लखे प्रभ के सेव पूछते उचे नान सो सेव दे पटाया भस्म करे लास्कर कोट लखे
1: ताको रखत एक हाथ
0: उसके कर्तव्य बिरथे जात सर्वनिया कर रख सोए जप नानक प्रभ लख बडाणी
2: बार बार प्रभ जपिए
1: ई अमृत मन तंत्र पिए
2: अमृतन जिन गुरमुख पाया
0: तिसके सेवन नाही
1: दृष्टाया
2: नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: मन नामे नाम सुमाने
2: बैठ सो
0: बदना कौन नानक

साबुन तुम कहते हो तब बैरों के संग माता तब शोकों के लिए व्याप्त तब मोकांग हो परम नान कन्या दुजा तब नंद पुत्र को किसको गनी तब रक्षुक को कौन तारे तब सुशक को किथाए तब कौन निडर कौन कचरे नान टापर कम अपार जनमरण को कहा बिना सुने तब जम की तास को हो किसोए तब चित्र को किसी सुन लेखा कौन से कम बंधन बादे नान का अपन रूप आप ही ऊपर जा अपन मैं कहो क्या सोता है कौन को मान कौन अभिमान है ऐसा चित्र लगत को किस एक से भूख कवन तृप्ता है नान करते का मैं सुमार कौन माए बाप में सुसुत पाई वेद कते कहा कुछी न तो सगन अब सगन कहाँ बेचारे हैं कौन ठाकुर कौन कही है चेरा नानक अपने का जानो आप वहाँ किसे व्याप्त माया ते गुण का ही प्रवेश ते कौन चिंतित जाते चिंता कौन कते कौन सुनने हारा नानक आप उसको आपे पहुँचा गुरु मैं कीनो विस्तार ओम लेको सुर पंचावत ओम मैं मो पहन पे पार अपने पुकार की ओ ध्यान खेल संकोचे तो मैं के कह जय पसरे पासार संप्रताप उनकी शोभा बनी अपे रखो गंगर जोग

0: जिसके आन बैठे जाए हुकम भूज परम पद पाए
1: जाके मन सचे निहार
0: अंजन पूजे गुरु के पैर।

0: शरण जोग सचन आए
1: कृपा प्रभा
0: मिट गए बैर पे सब रहे
1: अमृत नाम सार्थक रहे
0: सुप्रसन्न पे गुरुदेव
1: और होइ सेवकी सेवा
0: जंजाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: हर प्रसाद दया प्रतारी प्रभु की उस्त करो सन्मीत सुख मने सहज गोविंद गुण नाम इच्छा ताकि पूर्ण हुए सब ते ऊत पाए स्थान हर तन काट चले जन सोए हेम शांत रित नव निद विद्या तप जोग प्रभु ध्यान चार पदार्थ कमल प्रगास

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव
2: स्वामी परमेश्वर,
0: गुरुदेव का ज्ञान पंजन, गुरुदेव
1: मंत्र सहोदरा, गुरुदेव दादा हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा,
0: गुरुदेव सांत सद्गुर मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा,
1: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान भजन परंपरा,
0: गुरुदेव करता सब पाप हरता, पतित पवित करा, गुरुदेव

0: सकल मुनेश्वरन गाता
1: जयस्तु जब सरनी परे
0: इनके दृष्टि दुखत है मरे।

0: जन्नत कहे, जो गुरु नाम रिद में तरे, सो जन्म मरण दो थे रहे।
1: गुरबिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द स्वन,

0: जनमन बिहीन
1: चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन
0: लोग जोधे के बिखे जग जा पीजे जाप
1: आ देवनाथ मूर्त प्यो सब जे थाप
0: परम रूप नीत मूर्त पूरन पुरख पार
1: सर्व विश्व रचियो सेन भव गण पंजन हार
0: कालहीन कला सुयुक्त काल पुरख देश
1: धर्म धाम सो परम रहत भूत अलग पेश
0: अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम
1: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुखदाय काम
0: आप रूप मीक अनुसत एक पुरख अवतूत
1: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत
0: अंगहीन पंग नाथम एक

0: चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने
1: चतुर चक्रवर्ती
0: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
1: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वसे
0: चतुर चक्र माने चतुर

0: के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है
1: के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है
0: के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है
1: के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है
0: के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र पिस है
1: के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है
0: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र पिस है
1: के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र
0: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राज्य
1: के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है
0: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र देश है
0: के सर्वत्र मान्य सदैवं प्रधान्य
1: है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र ताप्य है
0: के सर्वत्र पान्य है के सर्वत्र मान्य
1: है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
0: के सर्वन कली में के बर्मन फहीम
1: है के साहिब कलाम
0: के हुस्न वजू है तमाम रजू है
1: सलाम सली खुद मुदाम
0: जनी मुल शिकस्ते गरीब।

0: सुकृत स्वरूप त्रिमुकुट विभूत है,
1: मुक्त प्रवाह है, सुजुक्त सुधा है,
0: सदैव स्वरूप अपेदी अनूप है,
1: सहस्व पराज है, सदा सर्वसाज है,
0: समस्त सलाम है।

0: निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है,
1: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है,
0: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है,
1: अनुकृत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है,
0: चा श्री छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है,
1: अपरम है कर्म है अनाद है जुगाद है,
0: अजय है अभय है अभूत है अतूत है,
1: नाश है उदास है अतंत है अबंध है,
0: अपगत है बिरकत है।

0: अवल जन द्वय प्रसाद नमो नरक नास सदैव प्रकाशे
1: अनंगन स्वरूपे अपांगन विभूते
0: परमात्म परमाते सदा सर्व साथे
1: अकाश रूपे निर्वाद विभूते
0: अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे
1: त्रिभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
0: न पुत्र न पुत्र

0: निखंड बर नर मंड
1: भवन आसमन मन प्रकाश
0: गुण गण प्रणाम जल थल मुदान
1: जियंग आसन अपंग
0: उपमय अपारगत मितुदार
1: जल थल मंड दिस विश्व पंड
0: जल थल महंत दिस विश्व अंत।

0: प्रसाद करुणालय है, हर काल है,
1: कल खंडन है, मैं मंडन है,
0: जगदेश्वर है, परमेश्वर

सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिय सुजो करियो रक्षा दीन बंधु संक हंता तुमो परिच दर्दस कंता काल पाए कर बिसन प्रकाश सगल काल

0: को नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी।
1: पीवो अमृत सदा रोवे रंग जप्यो सारंग पानी।
0: कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी।
1: सतगुरु बिना हो।

0: होवे मुक्त शब्द मन वसाए।
1: गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सो लिव लाए।
0: कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए।
1: सिमर

0: क्या तुद करम कमाया,
1: के करम कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया,
0: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया,
1: गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया,
0: कहे नानक शरीर प्रमाण हुआ सतगुरु शिव चित लाया,
1: ए नेत्रो मेरियो हर तुम में ज्योत तरी हर बिन अवर न देखो कोई,
0: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया,
1: एहो विश संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया,
0: गुरु प्रसादी बुझया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई,
1: कहे नानक एत नेत्र अंध से सतगुर मिलिए दीप दृष्ट होई,
0: ए सर्वनो मेरे ओ साचे सुनने नु पठाए,
1: साचे सुनने नो पटाए श्री रिलाए सुनो सतबाणी,
0: जिस सुनी मंथन हो रहोया सच सतमानी,
1: सच अलक विडानी ताकि गत कही ना जाए,
0: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचे सुनने नु पटाए,
1: हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया,
0: बजाया वाजा पवनो द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया,
1: गुरुद्वारे लाए पावनी इकना दसवां द्वार दिखाया,
0: अनेक रूप नाव नवनी तिसना अंत न जाई पाया,
1: कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया,
0: यो साचा सोयला साचे कर गावो,
1: गावो ता सोयला कर साचे जिथे सदा सच त्यावे,
0: सचो त्यावे जा तुद पावे गुरमुख जिना बुझावे,
1: यो सच सबना का कसम है जिस बक्से सो जन पावे, कहे नानक सच सोहेला।

बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास, रामदास ही सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनिया गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिठाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो हो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसौ पुरसौ चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसा हंदे साहो, जिस पास बैठियां सुहीय, सबना दा विसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा, माया ममता मोहनी, जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिनी सच नाम चित लाया। माया ममता मोहनी, जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे,

जब लो नहीं पाग लीला उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुतायो, कल कोर समुद्र में बुडत थे, कब हूँ मित है नहीं रे पछतायो, तत् विचार ज है मथुरा, जगतारन को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, सो कहो तल गुर सेविए, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसंदी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद जिथे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसा हांदे साहो।